0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: एतबार नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.9% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
9: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समिया. उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे मूड में होंगे और आपकी तबीयत ठीक होगी क्योंकि तबीयतें आजकल लोगों की बड़ी खराब है. पता नहीं कोई वायरल फैला हुआ है और मुझे भी हो गया है और मेरी तबीयत बहुत खराब है बहुत खराब है. और ना मेरे बस हर जगह मैं कुछ बोलने वाली नहीं हर जगह जो है वो दर्द हो रहा है. और ये मेरे लिए अजीब सी बात है कि मैं बीमार बहुत कम होती हूँ. आई लव टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ लेकिन हो गया वायरल है तो प्लीज अगर आप बीमार हैं तो प्लीज स्टे एट होम और या मास्क पहने ताकि अपना ये वायरल दूसरों को ना पहुंचाते रहें. राइट और हम अपने शोर पे अल्लाह से दुआ भी मांगे. अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. सूरह अनकबूत का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं. आइए पढ़ते हैं आयत नंबर 24 से. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बेशक हमने अकल वालों के लिए इस बस्ती में रोशन रोशनी को बाकी रखा. मदयन की तरफ से उनके हम कौम शुएब को भेजा तो उसने फरमाया ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो. फिर उन्होंने उसे छुटलाया तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए. अब सुन रहे थे सूरह अनकबूत का तर्जुमा. जो लोग दुनिया में फसाद करते हैं या जुल्म करते हैं और अभी भी ऐसा ही है कई मुल्कों में फसाद होने बिला वजह लोगों को मारा जा रहा है बिला वजह बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है. कुछ लोगों के अंदर बस ये गुरूर होता है उनको लगता है कि वही सबसे बेटर है और एक आराम वाली जिंदगी गुजारने का सिर्फ उन्हीं का हक है बाकी लोग कुछ भी करें हमें क्या. तो खैर अभी हम जो है पक्की दोस्त का टाइम भी हो गया है. बच्चा पार्टी कैसे है बच्चा पार्टी पक्की दोस्त की तरफ हम चलते हैं. और मैं बच्चों से ये बोलूंगी कि बच्चों अपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है. हाथ धोने अगर आपको लगे और मैं पेरेंट्स से यही बोलूंगी कि प्लीज अगर आपको लगे कि ये वायरल फैला हुआ है तो अपने बच्चों को मास्क बना के भेजें और अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे नहीं भेजें. लेट हिम रेस्ट. मेरी तरह नहीं है कि जी बस आगे हैं तो खैर दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अपने बच्चों का ख्याल रखें सेहत का. और बच्चों से मैं यही कहूंगी कि बच्चा पार्टी आपने जो है वो ब्रश जरूर करना है. ब्रश और हाथ ये जरूर धोने होते हैं सुबह अच्छे तरीके से. मुंह भी धोना होता है लेकिन इसमें यह है कि आपके जो जर्म्स है ना वो जरूर चले जाते हैं लिटरली सीरियसली. ओके तो हमें जो है ना वो आपको ये सब बातें बतानी थी. राइट और अभी हम चलते हैं पक्की दोस्त के गाने की तरफ. पक्की दोस्त का हम आपके लिए कौन सा गाना लगाएं. पक्की दोस्त का जो है ना वो हम अभी जो है ना मेरा दिल बहुत वो है अजीब सा और है बीमारी की वजह से तो हम जो है वो डूबा डाबा डिबली डम वाला ही गाना लगा देते हैं. सैयद उमर का मैसेज आया एंड आज का हमारा टॉपिक है कि आपने सबसे बहादुरी की काम क्या किया है. एंड एज एक्सपेक्टेड सैयद उमर अशरफ ने कहा है कि उन्होंने शादी की है तो दिस इज अ टॉपिक व्हाट इज द ब्रेवेस्ट थिंग यू हैव डन. उमर फातिमा भी सुन रही है क्या सोचेगी. ऑलराइट हेलो फातिमा हाउ आर यू. एंड सो आज मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है सो आई कांट टेक ऑल द नेम्स लेकिन आई कैन प्ले द सॉन्ग व्हिच इज एक्चुअली फॉर मी. सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक डूबा डाबा डिबली डम.

जी आप सुन रहे थे आई बिलीव आई कैन फ्लाई, ये गाना तो बड़ा प्यारा है। ये गाना इंसान को अपने आप पे बिलीव करना सबसे बहादुरी का काम है, और लोग अक्सर अपने आप पे बिलीव ही नहीं रखते। मुझे लगता है कि सेल्स का काम बड़ा मुश्किल है भाई, हाँ उसमें कराची के अंदर सेल्स करना चाहे आगे ना, अजीम सड़े हुए लोग हैं, अजीम। क्या आप किसी को कॉल करें वो अजीम सड़ा होगा, आप किसी से मिलने जाएं वो अजीम सड़ा होगा, मतलब लोगों ने हंसना ही छोड़ दिया यहाँ पे। ये है तो सेल्स, इतने सड़े हुए लोगों के साथ कुछ लोग करते हैं और फिर भी हंसते रहते हैं, बड़े बहादुर हैं भाई। खैर तो आप बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बहादुरी का काम क्या किया, आपने क्या किया है? शादी? अच्छा तो क्या सब लोग कह रहे हैं कि शादी कर ली है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने कर कैसे ली, कि अब तो हो गया बाद में एहसास हुआ यार ये तो हमने बड़ा मुश्किल काम कर लिया। खैर आप लोग मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे, या एक तीसरा तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं गाना फ्रॉम द मूवी कोको, और ये बच्चों की बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवीज है, आपको जरूर दिखाना चाहिए अपने बच्चों को। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, लेट्स एंजॉय।

0: about 12?
1: Have you seen a living boy?
2: Time Check is brought to you by
3: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111177837।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
5: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: 100 FM।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके दो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
10: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
11: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाए, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

टंकी गम इन्हें दी होती है, गाड़ियां शारियां इनकी ये चल रहे होते हैं, इनको नहीं कभी फर्क पड़ता लिटरली किसी भी चीज से। लेकिन खैर आवाज उठाना बोलना, मुझे लगता है आजकल लड़कियां ज्यादा ब्रेव हैं लड़कों से, लड़के तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने वाकई में हमने देखा कि इवन इन मीडिया यू नो फाइंड कितना कुछ वो डिफरेंस ला सकते हैं, लेकिन बस कुछ बोलते ही नहीं है, आराम से रिश्वत दे देते हैं, कोई काम फंस रहा है कहीं पे ना रिश्वत के खिलाफ हो कोई आवाज उठाते हैं। मैं कहती हूँ डरना सिर्फ अल्लाह की जात से चाहिए, इंसानों से क्या डरना है। और अब अमीर कहने के बगैर रिश्वत के वो मेरा जो है ना लाइसेंस बनवा के दे देंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन गाड़ी भी होनी चाहिए ना अपनी लाइसेंस के लिए, गाड़ी भी अच्छी वाली होनी चाहिए। मुझे कराची में ना जस्ट नॉट अबाउट लाइसेंस, कराची की वाइब ही नहीं मुझे समझ आती। सिर्फ डिफेंस में चला ले बंदा गाड़ी, वो तो डिफेंस के अंदर भी अब वाइब नहीं सही, अजीब वो गरीब मखलूकें निकल जाती हैं डालों को लेके वहां पे, जिनको लगता है कि सिर्फ डालों और बड़ी गाड़ियों की चलने की जगह है, बेचारे ऑल्टो वोल्टो या मोटरसाइकिल तो उनके सामने आए ना, तौफा तौफा अस्तगफुरुल्लाह। और मंजूर हुसैन मलिक, एम एच मलिक, तो एम एच मलिक आप खूबसूरत खवातीन की तारीफ करते होंगे, आई एम श्योर के मर्दों की तो आप तारीफ नहीं करते होंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, तो मर्द भी बोलेंगे अच्छा सही है। और खवातीन जैसे कितनी कहाँ कहाँ आपने उनसे कुछ मारें खाई हैं, क्योंकि मतलब आप कहते हैं कि बहुत बोलनी चाहिए, मुझे लगता है कि बहादुरी इसमें भी है। मैं तो खैर मेरी जिंदगी में रहते मैंने बहादुरी या शायद बेवकूफ़ी के काम ये किए हैं कि मैंने बॉसेस को एग्जैक्टली बताया है कि वो कितने बकवास हैं, जब भी मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ लिटरली कि आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, और मैं आई मेक इट वेरी क्लियर कुछ लोग बॉसेस इतने बकवास हैं और मुझे ज़रा याद नहीं आते। मुझे लगता है किसी भी इंसान खासतौर पर लड़कियों को तो उनके साथ बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में आपको लोग मिलेंगे हु नो हाउ टू वर्क विद वेमेन। तो मैंने ये बहादुरी का काम किया कि सबको सुना सुना के आई हूँ, बाद में सर पकड़ के रोई भी हूँ कि बेटा पहले नौकरी ढूंढ लेती फिर ये सब करती, लेकिन क्या करे कंट्रोल नहीं होता। उसी वक्त मैंने सुना दी। खैर हम अभी गाना प्ले कर रहे हैं हकीम शकील साहब के लिए। हकीम शकील साहब एक बहुत ब्रेव इंसान है, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ और हिम्मत करके उन्होंने इलाज कराया, कीमोथेरेपी किया। यकीन माने पेशेंट से ज्यादा हिम्मत और बहादुरी पेशेंट के साथ लोगों को चाहिए होता है, अटेंडेंट को चाहिए होता है, उनको ले लेके जाना, उनकी रिपोर्ट्स का ख्याल करना, अपॉइंटमेंट, वो भी पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ गवर्नमेंट अस्पताल बिल्कुल भी अच्छे सिस्टम से काम नहीं करते। यहाँ से पैसे वाले ही आपको लगेगा बड़े बड़े अस्पताल, आगा खान साहब सिटी लियाकत, खैर आई डोंट नो, बट वहां पे काम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो एड पे जा रहा है, वहां कुछ सिस्टम फिर भी है, लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल में सिर्फ सिफारिश है और वहां जाके इलाज करवाना, और फिर अपनी बीवी का उन्होंने इलाज करवाया और अब इंशाल्लाह जल्दी उम्रे पे जा रहे हैं, और फिर भी हर वक्त बहादुरी का काम ये है कि वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। मैंने उन्हें कभी शिकवा नहीं करते देखा, ये शुक्र करना हर हाल में ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी इस गाने की कि प्यार नाल ना सही, तो ये गाना मैं डेडिकेट कर रही हूँ हकीम शकील को और मंजूर हुसैन मलिक को। आइए सुनते हैं। और आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ समिया इंस्टाग्राम पे।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to mundo hai ara.
2: 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से बाबत लागू है।
6: 11.99%
7: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: मोहबानी नो परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके दो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
4: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एज पे अप्लाई करो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
4: And कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
6: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
1: FM 247 365 FM 247 365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
5: एंड कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: खवातीन व हज़रात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहिब कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस सवल का ताना माना बुरी सोबत और मेल जोल से आगे जोड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
4: connecting,
3: holding you,
4: holding
3: with FM 100.
5: FM 100.
6: FM 100.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: FM 247-365 FM 247-365

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to jindo hai ara
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से बाबत लागू है।
2: 11.99%
0: 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: महिलाना देखभाल में फितर परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: तफाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तफाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों जुड़ गए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: Us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. मोड़ी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to mundo hai ara.
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

राइट जी, सो वेलकम बैक. हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. तो हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आप लोगों के साथ हमारा जारी है. और हमने कहा कि भाई आपके क्या हाल हवाल हैं, कैसे चल रही है आपकी जिंदगानी, हमें जरूर बताएं कि लाइफ वाइफ सेट है आप लोगों की या नहीं है. भाई जो भी चल रहा है वो आप हमें बताएं. रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं और बातें भी चल रही हैं और लोगों ने हाजिरी भी लगाना शुरू कर दिया. वाह भाई वाह, ये तो बेस्ट हो गया. आज मेरे लिसनर्स जो हैं वो काफी एक्टिव और क्विक हैं. दैट इज सो नाइस एंड ग्रेट. ऐसे रहना चाहिए भाई, क्विक भी रहें एक्टिव भी रहें, कि बस पता हो कि हमें ये काम करना है तो जल्दी से उठ के, या जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कि इंसान को जल्दी से कर लेनी चाहिए. फिलहाल जरा दर्जा हरारत पर नजर डालते हैं कि इस वक्त मौसम की ताजतरीन सूरत हाल जो है वो क्या बयान करती है. तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 32 है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 35 है. तो इस वक्त थोड़ी बहुत गर्मी है कराची में, लेकिन बादलों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है. कुछ पल के लिए आपको लगता है कि जी मौसम जो है वो बड़ा अबर आलूद हो गया है, और कुछ पल के लिए आपको धूप महसूस होती है, लेकिन यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त कराची में चल रही है. आज है 7 अक्टूबर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी मौसम हम अच्छा ही एक्सपीरियंस करें. तो मौसम की ताजतरीन सूरत हाल तो ये है, और इसी के साथ साथ हम जा रहे हैं एक अदर ट्रैक की जानेब भी, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि जी इस ट्रैक को शामिल कर लें. तो ठीक है जी, हम इस ट्रैक को शामिल करते हैं. बहुत दिनों बाद आज हम इस ट्रैक को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो एंजॉय एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight

ओके, सो आई एम बैक अगेन. बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. लकवाल के ट्रैक को हमने शामिल किया था. रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, मजे में हैं. कहते हैं मैं भी गुड. एक शेर है, आप और लिसनर्स को भी सुना दें. ठीक है जी, सुना देंगे. कहते हैं शेर में शेर सुनाते हैं आपको, हंसी आ गई मुझे. कहते हैं होता है मेरे दर्द का हर रूप निराला अनोखा, सॉरी, होता है मेरे दर्द का हर रूप अनोखा, आता है तेरी याद बड़े भेद बदल कर. ओ माय गॉड. ठीक है जी, रशीद खान ने कहा था कि जी शेर सुना दे, तो हमने सुना दिया. ये शेर रशीद खान ने हमें मैसेज किया है. कहते हैं लंच में भिंडी है, आपके लंच में पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिरी. उसी के साथ से जरी नूर भी हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम, कैसी हैं, बहुत दुआ आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी. नसीर खोसो ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उसी के साथ साथ उन्होंने हमें मैसेज किया, यानी कि उन्होंने आरजे फातिमा खान के पेज पे कमेंट किया है और कहते हैं कि हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं. दुनिया में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची दो को एक कर देती है. अरे वाह, बड़ी गहरी बात है भाई. और बात तो ठीक है कि वाकई में भाई सुई जो है वो दो को एक कर देती है और जो कैंची है वो दो को एक कर देती है. तो बेहतर यही है कि जी एक बनकर रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई लड़ाई, मसले, फड्डे या कोई भी बात खराब ना हो. और जैसे कि हमेशा कहती हूं कि जी बात करने से बात बनती है, तो कोशिश करें कि आप हमेशा बात बनाने वाला काम करें, ना कि बात बिगाड़ने वाला. ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपनी नेचर को हमेशा इस तरह रखें कि आपकी वजह से जो है वो मामलात हल हों, बल्कि ये ना हो कि आपकी वजह से मामलात जो है वो बढ़ें. तो हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से जो है वो मामलात सारे सुलझें, ना कि उलझें. तो उलझने वाले काम आपने कभी नहीं करने, आपने हमेशा सुलझाने वाले काम करने हैं. ऑल राइट जी. सो भाई रशीद खान ने भी शेर सुना दिया है और जो है वो नसीर खोसो ने हमें ये बात कही है, कही है समराधी पोस्ट किया था, हमने कहा ठीक है जी इसे भी शामिल करते हैं. अच्छी है, मजे मजे की बातें का सिलसिला हमारे साथ जारी है. अच्छा, बहुत सारे लोगों की मिजाज होता है शेर व शायरी का, बड़ा पसंद होता है उनको शेर व शायरी करने का शौक होता है. तो अगर मेरे लिसनर्स में से भी कोई इस वक्त ऐसा है जिसका बहुत पसंद है शेर व शायरी, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का बनकर हमें बता सकते हैं कि कितनी पसंद है आपको शेर व शायरी, और शेर वेर आते हैं या कोई मजे के शेर वेर हैं तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वैसे शायराना मिजाज बिल्कुल नहीं है. कोई सुना दे तो अच्छा लगता है. तो भाई आज आप लोग हमें शेर सुनाएं, हम इन्हें शामिल जरूर करेंगे. तो हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं. 3636 से मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. जितने भी शेर आते हैं आज सारे सुना दें, हम उन्हें करेंगे शामिल. इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करें और कोई शेर आप हमें सुनाएं. तो आप हमें सुनाएंगे, हम बाकी सबको सुनाएंगे और बताएंगे कि भाई हमें किसने सुनाया है. तो इंतजार करें आपके मैसेज जिसका. चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस कुछ ही देर में. शेर याद करें, जल्दी से हमें मैसेज करें, फिर हम करेंगे उसे शामिल.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111-7837।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

and assalamu alaikum Pakistan, this is me Fatma Khan and I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस एक बार फिर से और 12 से 2 के दरमियान हमारा और आपका साथ होता है. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम दाखिल हो चुके हैं. अब बातें चल रही थी और उसी बातों में सडनली जो है हमें रशीद खान ने एक शेर भेजा. उसके बाद जो है वो थोड़ी गहरी बात जो थी वो नसीर खोसो ने करी और फिर हमने फैसला किया कि क्यों ना आज जो है वो जरा माहौल हम शेर व शायरी का बनाते हैं. कुछ उसमें फनी शेर भी रखेंगे, कुछ मजे के शेर भी रखेंगे. तो हमने अपने लिसनर से कहा कि भाई जो भी शेर आपको आते हैं या आपको याद है हमें सुनाए, हम उसे शामिल करेंगे आपके नाम से. और ये कहना ही था कि मेरे लिसनर्स के मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं जिसे मैं शामिल करूंगी. डील डन होती है. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत ही होती है कि एक अदर ट्रैक हम आपको डेडिकेट करते हैं, देन बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है. तो स्टे कनेक्टेड. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी स्टेटस अपडेटेड है. तो आप शेयर हमें वहां पर सुनाना चाह रहे हैं 3636 पे, आप पर डिपेंड करता है. जितने भी शेयर आपको आते हैं या याद हैं आज सुना दें हमें क्योंकि आज हम आपके शेरों को करेंगे प्रोग्राम में शामिल आपके नाम के साथ. इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम के सेकंड आपकी रिवायत कायम करते हैं, कदर ट्रैक आपको डेडिकेट करते हैं. सो एंजॉय.

ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने कर दिया आपको डेडिकेट. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हम रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बात करते हैं, और वो होती है कि जी आपके लंच में क्या है. और आज हमने कहा है कि जी बातें जो हैं वो हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन आज जो है वो हम आप लोगों से शेर भी सुनेंगे. और हमारे लिसनर्स ने जो है वो हमें शेर भी सुनाना शुरू कर दिए. जरीन नूर तो बड़े जबरदस्त शेर लाई हैं भाई, जिसे हम शामिल करेंगे. लेकिन मैंने कहा कि भाई ये वक्त तो होता है लंच जानने का, तो खाने की खुशबू ने दिल को किया बेकरार कर दिया. डाइट का इरादा था मगर बिरयानी ने इनकार कर दिया. तो मजे मजे के शेर इस वक्त मेरे सामने भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जी खाने पर बात चल रही है तो बात करते हैं. पेट भरा हो फिर भी दिल कहता है कि खा लो, जिंदगी छोटी है एक ओढ़ने वाला बना लो, क्या कहते हैं आप. तो भाई मजे मजे के शेर तो मेरे पास ही मौजूद है और हमारे लिसनर्स हमें बता रहे हैं. तो हमने कहा है कि जी जल्दी से आप हमें शेर सुनाएं, हम आपकी जुबानी आपके शेर को शामिल करेंगे और आपका नाम लेके शेर सुनाएंगे. तो आपके लंच में क्या है सबसे पहले आप लोग हमें बताएं 3636 से मैसेज कर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप बता सकते हैं कि आपके लंच में क्या है. लुकवल कहती हैं कि जी आज लंच में तुरई नान चिकन बनाई है. ओके सो ये कौन सी चिकन होती है, कोई नई रेसिपी है सो हमें बताइएगा. और जरीन नूर ने भी कहा है कि जी आज खाने में चिकन आलू की बिरयानी और सलाद है, वाओ दैट्स लवली. और रशीद खान ने भी हमें अपना लंच बता दिया कि उनके लंच में भिंडियां हैं. अब चलते हैं शेर की जानेब. तो हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं सलाम जी, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में दो. अरे वाह, लाखों में एक नहीं लाखों में दो, जबरदस्त है. ये एक ऐसा शेर है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कि उन्होंने इसमें चेंज कर दिया कि वो लाखों में एक नहीं है लाखों में दो है. बासित ने हमें शेर सुनाया है मलीर कैंट से, उसी के साथ साथ जरी नूर एक और शेर सुनाती हैं, मतलब काफी शेर हैं तो जरी नूर के हम शामिल करेंगे. कहती है एतबार के काबिल तो जिंदगी भी नहीं, लोग एतबार की बात करते हैं, वाह वाह. सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिल को वफा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर में, मगर यहां तो दिल लगाने की सजा मिलती है. अरे वाह. तो भाई ये दो शेर जो थे वो हमें जरीन नूर ने सुनाए थे, और बाकी शेरों को भी हम शामिल करेंगे. तो आप जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और अपने पसंद के शेर के बारे में हमें बताएं जिसे हम शामिल करेंगे. वो भाई आपने जो भी शेर सुना है वो आप हमें बता सकते हैं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के पेज पर शेयर कर और हमें बताएं कि आपके लंच में भी क्या मौजूद है और शेयर भी बताएं. डाइट का सोचा था सुबह बड़े आराम से, शाम को समोसा मिल गया मुस्कुराहट के साथ. तो मजे मजे के इस वक्त मैंने कहा कि भाई खाने पीने पे बात चली है, तो चलो जी जरा खाने से भी रिलेटेड शेर शेयर करते हैं. खाना देखो तो भूख भी जाग उठती है, वरना हम कह रहे थे कि आज डाइट करनी थी. अच्छा सारे शेर जो है वो डाइट से रिलेटेड आ रहे हैं मेरे पास. चलो जी, तो आप लोगों के शेरों को हम जरूर करेंगे प्रोग्राम में शामिल. तो जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि कौन सा शेर है जो आपने सुना है और आप हमें भी सुनाना चाह रहे हैं. तो हम करें आपके मैसेजेस का इंतजार, जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि जी आपकी पसंद का शेर जो आप हमें सुनाने वाले हैं जल्दी से सुनाएं. ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम बैक अगेन और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। तो वापस आ गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको HBL फ्रीडम अकाउंट के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करते चलें, जो कि आपके लिए फायदेमंद भी हैं और कुछ स्मार्ट चॉइसेस भी हैं जिसे आपने अपना लेना चाहिए। तो कारोबार को दें स्मार्ट बैंकिंग की आजादी HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक और जदीद ऑनलाइन बैंकिंग, ताकि आप ज्यादा तवज्जो दें अपने बिजनेस पर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बैंकिंग होनी चाहिए आसान। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपनी रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाएं मजीद साहिल और तेज। तो ये है जी कुछ मालूमात आपके लिए जो कि आपके लिए हो सकती हैं काफी फायदेमंद। तो मैंने कहा ठीक है जी, क्यों ना अपने तमाम सुनने वालों को बताया जाए HBL फ्रीडम अकाउंट के हवाले से।

तो भाई शेर व शायरी पर हो रही है बात, के जो भी शेर आपको याद है आप हमें सुनाएं या बताएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का बड़ा शायराना मिजाज इस तरह भी होता है कि वो बैठे बैठे कोई ना कोई शेर बना लेते हैं, तो कोई ऐसा भी शेर आपके जहन में आ रहा है तो भाई हमें जरूर सुनाएं। अच्छा भाई, लुक वर्ल्ड ने भी हमें एक शेर सुनाया है, तो चलें जी इसे भी शामिल करते हैं। कहते हैं, तेरी आवाज की मस्ती में शाम ढलती है, तेरी हंसी से मेरी हर थकन निकलती है, तू जब माइक पर आकर जरा सा बोलती है लगता है जैसे मेरे दिल की रोशनी सी घुलती है। वाह वाह। कहती है, तेरी आवाज नहीं एक नशा है फातिमा, जिसे सुनकर मेरे हर दिल हर दुआ संभलती है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई लुकवर्ल्ड, आपने बैठे बैठे इतना अच्छा शेर बनाया है जो आपने मुझे डेडिकेट किया, यानी कि मेरे लिए शेर। ओ माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज सो नाइस, और बहुत अच्छा लगा भाई इस शेर को सुनकर। और ये आपने अपने खुद स्किल से बनाया है तो भाई क्या कहने हैं आपके, क्योंकि हर चीज को देखकर काफी जो है वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, तो क्या बात है जी। एन नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके और आपके इस प्यारे से शेर के लिए, थैंक यू। और शेर व शायरी का इस वक्त जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मुकाबला चल रहा है, तो आप लोग अपनी पसंद का कोई भी शेर हमें जो है वो सुना सकते हैं और बता सकते हैं। भाई इसी के साथ हमारे पास एक और शेर भी आया है, जिंदगी भी अजीब इम्तिहान लेती है, खुशी दो पल की और टेंशन पूरा दिन लेती है। वैसे ये तो एक फैक्ट है कि यही सूरत हाल है कि जो है वो खुशी दो पल की होती है, टेंशन ना हमारे जहन पर इतनी ज्यादा सवार हो जाती है कि हम पूरा दिन ही उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और एक और शेर भी है, हम भी कमाल करते हैं खुद को बड़े मजे के चिरा रहे, खुद ही रोते हैं और खुद ही मरने का इंतजार करते हैं। तो ये बात तो सही है कि हम जो है वो खुद ही रूठते भी हैं और खुद ही मनाने का इंतजार भी कर रहे होते हैं, कि इंतजार भी होता है हमें और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता कि जी हम रूठ गए हैं। अच्छा जी, तो मजे मजे के शेर तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, आप जल्दी जल्दी हमें बताएं कि कोई शेर जो आपको याद है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ जी, आज जो है वो पम्पकिन सीड्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं उसका दिन। ये कद्दू के बीज बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें या इसका इंटेक जरूर करें, क्योंकि इसके फवायद के हवाले से हम आपको आगाही फराहम करते हैं कि मैग्नीशियम और हेल्थ के फैट्स की वजह से हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, बोन्स के लिए मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है, जिंक बोन्स को सपोर्ट करते हैं, स्लीप के लिए मैग्नीशियम की वजह से रिलैक्सेशन और बेटर स्लीप को सपोर्ट करता है, एनर्जी और मसल के लिए यानी कि मैग्नीशियम मसल और नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए जिंक इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइजेशन के लिए इनमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, स्किन एंड हेयर्स यानी कि आपके बालों के लिए आपकी स्किन के लिए जिंक और एंटीऑक्सीडेंट स्किन और हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पम्पकिन सीड साइड्स में छोटे जरूर होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, मैग्नीशियम जिंक हेल्थ और फैट्स और फाइबर की वजह से ये हार्ट बोन्स इम्यूनिटी और ऑल ओवर हेल्थ के लिए एक अच्छा स्नैक हो सकते हैं, तो उसको आप जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। बस क्वांटिटी का ख्याल रखें क्योंकि सीड्स हेल्दी होने के बावजूद कैलोरीज डेंस होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कैलोरीज होती हैं। आप ये नहीं है कि जी इतने फायदे हैं तो आप भर भर के खा रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जरूर अपनी डाइट में ऐड करें क्योंकि इसके फायदे हैं, सो प्लीज हैव इट। तो ये मैंने कहा आपको बताते चलें भाई, रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है। अच्छा भाई, हमारे पास क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है जी, उसको भी एक एक करके हम शामिल करते हैं। कहती हैं, फातिमा एक रिक्वेस्ट है, सॉन्ग में तेरा नाम बताऊं किसको, ये है सुना किसी को। अच्छा ठीक है, हमें रशीद खान मैसेज करते हैं, कहते हैं कुछ पोइट्री है, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, जब नहीं रहेगी या दिन तो इनकी याद में होगी। वाह वाह वाह, सही है भाई, मजे मजे के शेर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, इसमें कुछ फनी भी हैं, कुछ इमोशन से रिलेटेड भी हैं, जबरदस्त हो गया भाई। अजरी नूर ने भी सुनाए हैं, रशीद खान भी सुना रहे हैं कि चलें जी, कुछ पोएट्री है, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, जब नहीं रहेगा ये दिन तो इनकी याद में होगी। वाह वाह वाह, कितनी गहरी गहरी बातें हो रही है भाई आज हमारे शो में। सब इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, जल्दी जल्दी आप जो है वो अपनी पसंद का शेर हमसे शेयर करें। हम आते हैं वापस ट्रैक के बाद और इंतजार कर रहे हैं आपके शेरों का।

0: ओके सो भाई बड़ा मजा आ रहा है शो में, क्योंकि सबकी हम शेर वेर सुन रहे हैं, सब में मजे मजे के शेर सुना रहे हैं और शेर व शायरी का मुकाबला जो है वो इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। ऑल राइट, और इसी के साथ साथ भाई हमसे किसी ने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, कहते हैं फातिमा एक रिक्वेस्ट है सॉन्ग की, मैं तेरा नाम बताऊं किसको। अच्छा ये कहा किसने, ये रिक्वेस्ट किसने की, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन चलें जी हम इसे शामिल करेंगे और जरूर आपको बताएंगे, शामिल करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपको आपका नाम डेडिकेट करवाना है तो अपना नाम बता सकते हैं। सो इसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज भी आया है जरीनूर का। जरीनूर कहती हैं, चाय ने कॉफी से कहा इतना अकड़ मत दिखाओ, सबकी पहचान गर्म पानी में ही खुलती है। सही बात है, वैसे वाकई में ना चाय अकड़ दिखा सकती है ना कॉफी अकड़ दिखा सकती है, क्योंकि हकीकत उनकी जो है वो गर्म पानी की नजर ही हो जाती है, लेकिन फिर भी भाई बड़ी अकड़ होती है चाय में भी और कॉफी में भी। अच्छा जी, कुछ लोग अल्फाज से नहीं अपनी मौजूदगी से दिल जीत लेते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट से दिन की रंग बदल जाते हैं। तो ये तो हकीकत है कि कुछ लोगों की जो एक मुस्कुराहट है या उनकी अपेरेंस ना आपके लिए इतनी अच्छी होती है कि वो आपके पूरे दिन को ना बहुत अच्छा कर देती है। सो ये तो हकीकत है। और शेर व शायरी का मुकाबला तो नहीं है, बल्कि मतलब हम मजे की बातें कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि जी आपने अपने शेर सुनाएं और हम इसे शामिल करेंगे आपके नाम से। तो भाई अभी तक हमें जरीनूर बड़े अच्छा शेर सुना रही है, लुक वर्ल्ड ने बड़ा एक अच्छा शेर सुनाया, मतलब बनाया और हमें सुनाया, तो थैंक यू फॉर दैट। रशीद खान ने सुनाया है, जरीनूर ने सुनाया है और एक दो गुमनाम मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं, लेकिन आप अपना नाम भी बताएं हम उसे भी शामिल करेंगे। और शेर व शायरी की बात हो रही है तो मैंने कहा चलें जी एक अच्छा सा ट्रैक भी शामिल करते हैं, जो कि है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो उसे भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक।
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजा ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: पापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट

तो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं भाई, और आज बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हमने आप सबके साथ। और आज ही मुझे पता चला कि भाई मेरे लिसनर्स जो हैं वो बड़े शायराना मिजाज के मालिक हैं। तो फिर ये बात तय होती है कि एक दिन सिर्फ शेर व शायरी पर होगी बात, और जानेंगे जो भी शेर आपके दिल में है या अगर है आपका शायराना मिजाज तो आप हमें सुनाएं जबरदस्त किस्म के शेर, जिसे हम करेंगे शामिल। तो आज तो टेस्ट ले लिया है हमने अपने लिसनर्स का, और इससे हमें अंदाजा हो गया है कि काफी शायराना मिजाज रखते हैं हमारे लिसनर। सो अंटिल एंड अनलेस इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत। सो सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in Our Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, 7th of October, 2026. Aap sun rahe hain hamara show, jiska naam hai Genie in Our Radio, and finally, October bhi start ho gaya hai. And then, phir November and December, aur phir ye saal bhi jo hai. कुछ महीने बाद यानी ऑलमोस्ट दो महीने बाद ये साल भी खत्म हो जाएगा. राइट, सो फॉर दोज हु हैव जस्ट ट्यून इन एंड जो नए हमारे सुनने वाले हैं उनको नहीं पता कि मैसेज कैसे करते हैं. मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है. टाइप कीजिए स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और 3636 पर भेजना है. या अगर आप चाहते हैं तो facebook.com/rz.jasminejzmini वहां पे भी जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हमें बता सकते हैं. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो एंड मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा. और मैसेजेस करते रहिए 3636 पर.

Alrighty everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोग हमें बिल्कुल मैसेजेस करें 3636 पर. तरीके कार बहुत ही आसान है. टाइप किए जाए स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और 3636 पर भेजना है. यू कैन ऑल्सो सेंड इन योर मैसेजेस ऑन माई पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine. ओके, सो 2:10 हो गए हैं. आप लोगों के साथ हम 4 बजे तक मौजूद हैं.

0: 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. कॉल नाउ एट 03111-7837.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: Radio.
1: Alrighty, everyone. Welcome back. Up Suner for 100 Pakistan. It's 17 minutes past 2 on the dial right now. 4 बजे तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं. हमारे पास नूर का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम नूर. बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए आप कैसी हैं? And वीक अच्छा रहा. आप बताएं आपका कैसा रहा, क्या किया? एंड उन्होंने कहा है कि आतिफ असलम का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए. अच्छा नहीं, ठीक हो गया है. हम आतिफ असलम का सॉन्ग अपने शो में इंक्लूड कर लेंगे. थैंक यू. जरी नूर का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सजाद अरिका कह रही है कि कोई भी सॉन्ग लगा दीजिएगा. ठीक हो गया है. एंड समी शेख ने हमें मैसेज किया है और उन्होंने सॉन्ग जो है वो रिक्वेस्ट किया है. झूठा प्यार बाय जबरान राहिल. ठीक हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज समी शेख. बिल्कुल काम चल रहा है इस चीज में. आवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग सो होपफुली जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा. ओके, सो आप लोग मैसेजेस करते रहे. मीन वाइल हम जा रहे हैं एक और सॉन्ग की तरफ. एंड दिस ट्रैक वुड बी द रिक्वेस्ट ऑफ नूर और उन्होंने कहा है सजाद अली का सॉन्ग. सो दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद. हर जुन बाय सजाद अली. ये रिक्वेस्ट जरीन नूर की है. दिस ट्रैक इज फॉर यू जरीन.

Alrighty, everyone. Welcome back. Up to FM 100 Pakistan. And the show is called Genie in our radio. My name is Jasmine. So, guys, today we are going to talk about a very interesting topic. And it's really interesting. It's a very topic. You have heard it. You have heard it. सही है. तो अब आपने ये बताना है कि आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो, किसी आपके किसी जानने वाले की नहीं, ऐसे रैंडमली किसी की आपने हेल्प कर दी हो और वो ही हेल्प यानी वो ही मदद आपके गले पड़ गई हो. सही है. लेट अस नो ऑन 3636. ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी के लिए कोई अच्छी, जाहिर है एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपने किसी की हेल्प कर दी किसी भी चीज में, लेकिन वही बाद में जो है वही मदद करना आपके ऊपर भारी पड़ गया हो. लेट अस नो ऑन 3636 या फिर आप पेज पे हमें बता सकते हैं ऑन facebook.com/rj.jasmine. ऑल्दो कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप तो अपने, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आप अच्छे नीयत से जो है आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता कि इसका बाद में अंजाम क्या होगा. आपने तो अपनी तरफ से अच्छा कर दिया होता है, लेकिन बाद में वही अच्छाई जो है आपके गले पड़ जाती है. सो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके या फिर पेज पे बता सकते हैं. ओके, इसी के साथ साथ जो है हम आपको HBL फ्रीडम अकाउंट के कुछ फवायद भी बताते चलें. सो हर बिजनेस ओनर की जरूरत है HBL फ्रीडम अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी. सो आज ही अपना HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदा उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियात का. इसी के साथ साथ जो है कारोबारी अदायगियां हो या रोजाना की ट्रांजेक्शन्स, HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान एंड ज्यादा स्मार्ट. सो गो एंड जाके अपना HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और इसके सारे फवायद से जो है वो फायदा लें. एंड इसी के साथ साथ जो है वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक. एंड मायरा ने हमें कहा था कि आतिफ असलम का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग जो है वो इंक्लूड कर लें अपने शो पे. तो इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. द ट्रैक वुड बी जलपरी. एंड टॉपिक मैंने बता दिया है कि कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसी अच्छाई की हो आपने जो बाद में आपके गले पड़ गई हो. लेट अस नो वो क्या थी.

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. सो आप लोग बिल्कुल मैसेजेस करें हमें 3636 पर. आज का टॉपिक जो है हमारा, इट्स अबाउट कि आपने कोई ऐसी अच्छाई की हो, किसी के साथ कोई हेल्प की हो और वो बाद में आपके गले पड़ गई हो. लेट अस नो ऑन 3636. So right now we are moving on towards another track and this is going to be the song called Jo Tu Namla by Asim Azhar. Milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahega.

0: Radio. Radio.
1: Alrighty, everyone. Welcome back, Absolute FM 100 Pakistan. And it's 57 minutes past you on the dial right now. Zareen message kiya hai hume. And she says ke maine bhi kisi ke saath achhai ki thi. Mushkil waqt mein saath diya tha. Okay, financially inhone help kiya tha. Lekin, achha, ghar walon se chup kar. Okay, magar koi sila nahi mila. Oh, that's really sad, yaar. क्या करें जिंदगी इट हैपन समटाइम कभी ये भी होता है कि आप अपनी तरफ से तो आपकी ज़ाहिर इंटेंशन अच्छी होती है नीयत साफ होती है दिल साफ होता है लेकिन सामने वाले का नहीं पता होता ना कि अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो सामने वाला हमें किस नज़र से देख रहा है उसका क्या इरादा है कि वो बेवकूफ़ बना के बस गायब हो जाए और जस्ट ये कि वक्त पर उसका साथ दिया तो उसको इस चीज़ को जो है भूल जाए सो हो जाता है होता है और जाहिर है लाइफ है ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं कोई बात नहीं है जरी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है आपने अपनी तरफ से अच्छा किया बस आप अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दें और इसका सिला आपको अल्लाह पाक से इंशाल्लाह जरूर मिलेगा बंदों से तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती लेकिन हाँ अल्लाह से जरूर रखनी है सो जनाब अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ टॉपिक हमारा यही है आपने बताना है कि आपने किसी की हेल्प की हो और वो जो हेल्प है वो बाद में आपके गले पड़ गई हो लेट अस नो facebook.com/arj.jasmine jzmine इस पर बता सकते हैं राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा
2: Keep it locked to 100 FM.
3: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
4: Connecting.
3: Folding you.
4: Folding.
3: With FM 100.
5: FM 100.
6: FM 100.
7: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
8: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
7: 0311-111-7837. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestones, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से हम चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मा को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and it's 24 minutes past 3 on the dial right now. 4 baje tak aap logo ke saath hum maujood hain. Okay, Afsha Seher ne hume message kiya hai. Waalaikum assalam. Bilkul theek thaak. Aap bataiye Afsha, aap kaisi hain? कह रही हूँ मैंने अपनी दोस्त की हेल्प की थी और वो चीज जो है मुझे भारी पड़ गई. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. बाकी इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है पल पल. ओके, जरूर प्ले कर देंगे यार, काफी टाइम से प्ले भी नहीं हुआ है ये गाना. बड़े टाइम बाद रिक्वेस्ट आई है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, हमारे पास नबील का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम नबील. उन्होंने सॉन्ग पसूड़ी रिक्वेस्ट किया है. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स सी सॉन्ग कॉल्ड पल पल, और फिर मिलते हैं इस गाने के बाद. द ट्रैक इज इट विल बी फॉलोड बाय पसूड़ी. सो इस गाने के बाद आपसे मिलते हैं.

0: Radio. Radio. Genie in radio, radio.
1: Alrighty, everyone, welcome back. Up Sun Ra for 100 Pakistan, and it's 37 minutes past 3 on the dial right now. So, Janab Show ka time thoda sa reh gaya hai, and hamare paas jo hai wo request kafi sari jo hai ye aayi hui hai. तो अगर आप लोग कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं facebook.com/rz.jasmine आप बता सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं वहां पे और मुझे बता सकते हैं एनी सजेशंस फॉर द शो. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक जो कि पसूरी सॉन्ग है, और मिलते हैं इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा इट विल बी फॉलोड बाय शाम से पहले बाय आलमगीर. सो इस गाने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं.

0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं। मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतीस ख्वातीन में कबल अज वक्त मेनोपॉज का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: फ्रॉड और जाली पैगाम से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगाम और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूम हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगाम पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूम की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। PTA बैंक के सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूम तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशबूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, PTA बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशबूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूम हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: genie innovative radio

0: Bellini in Radio. Radio.
1: Alrighty, everyone, welcome back. It's 48 minutes past 3 on the dial right now. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान शो का नाम है जेनी ना रेडियो शो का टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है एंड हमारे पास मैसेज आया महविश का. वालेकुम अस्सलाम महविश, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं. ओके, सांवली सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया हुआ है हमें वाइटल साइंस का. यार मैं कोशिश बिल्कुल करूंगी कि मैं अगर मतलब टाइम हुआ तो मैं चला दूं, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट हमारे पास लाइन अप हुई है. पिया पिया कॉलिंग के लिए

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुताल्लिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा डायबिटीज खवातीन में कबले अज वक्त मेनोपॉज का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: FM. The Soundcheck is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
1: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%
0: 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL
6: 100 FM। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
7: This program is brought to you by
8: Dabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
0: and HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
9: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। मोड़ी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
11: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO।
2: महिलाना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
3: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye
1: and HBO Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBO.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery. Hai to, dil to hai ara.
3: 11.9% 11.9%.
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपने करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%
1: 100 FM. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: परेशानी नो परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बाल फैमिली पिक्चर लाइन उमराह पर जाएं
1: एंड HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBO।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से बाबत लागू है।
2: 11.99%
0: 100 FM
6: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ।

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: तीन बार मौत
2: टाइम से ऐसे ही मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सू मारिया, सब कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सार्फ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सार्फ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुंडाकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: 6 PM. The sound check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%
0: 100 FM. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: बाल फैमिली मिक्सचर लाइन, उम्रा पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज है, लिहाजा इस मामले को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने और जज्बात को भड़काकर अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज करें। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation.
4: This is FM 100.
5: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
7: This program is brought to you by Tabal Family Mixture Line, Umrah par jaye
5: and HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO।

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
1: FM 24/7 365
2: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil to hai ara
2: 11.99% 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99% 100 FM
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाए? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: पानी, नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बाल फैमिली मिक्सचर लाइन, उमरह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: 11.9 फीसद 11.9 फीसद
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
2: 11.99% 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: टबाल फैमिली मिक्सचर, लाएं उमराह पर जाएं।
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: 7 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Dabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
0: and HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. And
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: 11.9% 11.9%.
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
10: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account।
7: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
9: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: एंड
11: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल जो है
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: 11.9% 11.9%.
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99% 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: miserable. You're having fun. Across the nation.
1: ग्यारह अशारिया नौ फीसद।
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
5: 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
8: प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतीस ख्वातीन में कबल अज वक्त मेनोपॉज का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
7: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
9: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
10: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
11: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
13: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
12: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
14: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
12: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
14: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
14: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
12: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
12: आइए वेट से आगे का सोचें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट के की फाइल एक्सटेंशन चेक करें, pta.txt महफूज है लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
1: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: FM 247 365

0: It's 8 p.m. The Sound Check is brought to you by
1: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
0: This program was brought to you by Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
4: FM 24/7 365 FM 100.
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
6: listening to the greatest radio station.

0: TPM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: facebook.com/fm247365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतीस ख़वातीन में क़ब्ल अज़ वक़्त मेनोपॉज़ का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
0: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: This public service message is brought to you by FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: तरफ।
1: This program was brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 9 PM।
3: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
5: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
6: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
7: हमारी जिम्मेदारी है।
8: खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/fm247365
1: fm247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: FM247365.
0: FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.

0: पर एतबार नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: सेमिनार से लेकर तलबा तक रसाई के प्रोग्रामों तक के एनएफएट मिशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान एएनएफ का साथ दे मुस्तकबिल बचाएं कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa alaikum salam. Salam Pakistan. Mere bhai bhaiyon ko aur sajjanon ko mera salam. Aap jante hain, today is the greatest day of my show's day, and we have got beautiful, charming guests. To perform and sing, whatever. And as you know, this program is not communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous, and funny. A little living, breathing cartoon. None of the words spoken in this show. And you must verify things you understand. And respectable source will be true. The writers, anchors. This show played in Sunday or Sajbath cannot be held responsible if some words are too spicy or hurting to you. You may not listen to this show. You are hurt easily. Or if you are below the age of one. So henceforth, parental guidance is strongly advised. So without much ado, हम ना करते हैं इस शो को शुरू. आपको बताऊं कि आज के जो लिस्ट बनाने और जो हमारे साउंड इंजीनियर जो हैं प्रोग्राम को सुपरवाइज करते हैं उनका नाम है और लिस्ट भी बड़ी खूबसूरत बनाई है आप सब लोगों के लिए. और हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं विराट मजदू. हम कर रहे हैं इस शो को शुरू. जी हमारी ये गेस्ट आई है हुमा खान. हुमा कवल खान. हुमा कवल खान आपकी मेटी कुछ लिखा ना मेटी. हुमा खान कवल. हुमा कवल खान और ये उन्होंने कहा है इससे पहले कि आपसे बात कर रहा हूं उनका गाना पहले चलवाता हूं. ये जी

कि इनकी आवाज जो है ना वो फेसबुक पे आ रही होगी, करियर में भी आ रही होगी, आपके होगी।

0: ये बहुत तंग करते हैं भाई मुझे, बड़े भाई है ना मेरे.
1: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
2: connecting,
1: holding you,
2: holding
1: with FM 100.
3: FM 100. FM 100.
4: मेरे जना आपने देखा जनाब कैसे कैसे टैलेंट्स मैं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाता हूं. और वो कहते हैं यार आप हमें बुलाते नहीं हैं. जब बुलाऊं गायब बड़ा कुछ होता है. एक्चुअली ये भी आर्ट्स काउंसिल में काम करती हैं, आप भी हैं, हम भी आर्ट्स काउंसिल बहुत जाते हैं. वहाँ आर्टिस्टों का जमघटा होता है. वहाँ जिन जिन यार आप शेखी साहब आप तो मैं बुलाती हूँ तो पूछती नहीं. अच्छा भाई आप नेक्स्ट फेस्टिवल वर्ल्ड को आ जाना. आप अब फोन नंबर दिया, सब कुछ दिया, मैं फोन कर रहा हूँ कोई नहीं उठा रहा, फोन कर रहा हूँ कोई नहीं उठा रहा. बात की आखिर में आज तो मैं नहीं आ सकती, आज कुछ मूड नहीं हो रहा है. मैंने कहा मूड नहीं हो रहा नहीं. अच्छा बोलना नहीं आता कि क्या एक्सक्यूज क्या है ये नहीं बोल रहा. डर लग रहा है, इससे डर लग रहा है. भाई बाप के साथ आ जाओ, माँ के साथ आ जाओ, भाई के साथ आ जाओ, मैं और देर में आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 11:30
5: हम लोग तो बेजरर लोग हैं, हमसे क्या डरना है.
4: हम और क्या, हमारा जहर निकाला जा चुका है,
5: डंग भी निकाल दिया,
4: डंग भी निकाल दिया, कुछ नहीं बचा. हाँ तो बात यह है कि मैंने चांद से पूछा कि मेरे प्यार सा हसीन ने देखा है कहीं. चांद ने कहा इश्क में अंधा, इश्क में अंधा तू है हम नहीं. छोटे छोटे चुटकुले मैं लिख के लाता हूँ ताकि मुझे याद भी रहे और आपको लोगों थोड़ा थोड़ा मैं एंटरटेन करता रहूं. अब मैं चलता हूँ एक और गाने की तरह जो कि मैडम का गाना है और वो गाने का क्या वर्ड्स हैं.
6: तार की बूंदे बरस रही हैं,
5: प्यार की बूंदे बरस,
4: प्यार की बूंदे
5: बड़ा छिड़काव इधर भी
4: पता नहीं कहाँ बरस रही है, हम कहाँ थे उसको. जनाब

0: अब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये आपने गाना सुना, ये शिराज उप्पल ने गाया था, आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा गाया। अच्छा ये मामा जी हमें अपनी कमी का कैसे एहसास होता है, मतलब हम अपनी कमी को कैसे पहचाने।
1: अरे भाई बड़ा अब्बा, अरे बहुत आसान काम है बच्चा,
0: तुम अपने पति की एक गलती उसे बता दो, वो तुम्हारी तुम्हारे पूरे फैमिली और तुम्हारे दोस्तों की सारी गलतियां बता देगी। सिर्फ इतना नहीं, अगर और जानना चाहो तो उसके मैके वालों के लिए कुछ कह दो, फिर ये एक शब्द गलत नहीं बोल दो बल्कि बोल ही दो, तो वो तुम्हारे परखों की कमी बता देगी। बहुत आसान काम है, कोई बात नहीं। हम अब चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। अच्छा किसने कहा कि सारी उम्र मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी होती है तो सीधा मौत, वो भी कुत्तों की, कुत्तों वाली। बाकी तो घपले करने वाले मजे लेते रहते हैं, मेहनत करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। ये सब बातें अब हमारे पास तो फनकार ही फनकार है, फनकार क्या, फनकार की बहनें भी अब हैं जो कैमरामैन का काम कर रही हैं, और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत चिंट। कितने आप लोग बहन भाई हो? माशाल्लाह पांच बहन भाई, मतलब पांचों तो बहन है या कुछ भाई कुछ बहन?
2: नहीं दो भाई,
0: दो भाई भी है भाई। कैसे हैं? तंदुरुस्त?
2: नहीं वो है, तंदुरुस्त है लेकिन छोटे हैं।
0: सबसे
2: पहली मैं ही हूँ।
0: अच्छी बात है। बस ये है कि भाई देखिए बार बार हमारी लड़ाई तो हुई थी। हाँ कब हुई थी, कहाँ, क्या बात हो गई? कल ये रोड पर मेरी बीवी को छेड़ रहा था, उसने मना किया था, ऊपर से बदतमीजी करने लगा। चल कोई ना कोई ऐसी बात तो कहता है, पुलिस वाला कहता चलो चलो राजीनामा कर लो, छोड़ो। बीवी कहती नहीं मैं राजीनामा नहीं करूंगी, जब तक इसके माँ बाप और भाई मेरे पैरों में पड़कर माफी न मांग लें, वरना इन्हें छत पर लगवा दूंगी। वो बाप और भाई इतने घबरा गए और फौरन एकदम से आगे बढ़े और कहने लगे कि भाई बात यह है कि सर आप बताएं कहाँ इनके पैर पड़ने मैं बता दूं। अच्छी बात है ना, वो समझदारी से काम लेने, तो वो औरत तो उसके सर पे खून सवार हो चुका था।
2: सही बात,
3: बुरी याद आ गया लतीफा। अच्छा लतीफा, अच्छा लतीफा।
4: आइए बातें बैठे जीते अभी
5: है। FM 100's टाइम चेक, इट्स 12 midnight।
3: Hello.
6: More music. You're in tune to
3: FM 100.
7: Music is your own experience. Your own thought. And it comes out of FM 100.
0: बताएं कि एक सॉन्ग है मैंने बहुत अरसे पहले गाया था और पिछले हफ्ते मैंने चलाया, तो मैं घर पे जाके चेक किया फेसबुक, तो बहुत सारे लोग थे, ये गाना बहुत अच्छा था, ये था वो था, और हमारी बहुत अच्छी सिंगर सदफ मुनीर, उनको भी पसंद आया। तो ये गाने को मैं अभी चलाऊंगा और मैं और हुमा जी हम साथ में इसको मिलकर गाएंगे जनाब, ठीक है ना?
4: बिल्कुल, आप रेडी हो जाएं। और ये है कि

0: अच्छा पुलिस वाला जो ना पुलिस वाले ने शराबी के ऊपर पैर रख के कुछ कहा तो शराबी हड़बड़ा के उठता है तो तू कौन है भाई तो कहता है अरे मैं पुलिस वाला हूँ तो तू पुलिस वाला है या ठेले वाला इस तरह पैर तो नहीं रखते किसी पे ना
1: अरे तो थल थाने चल तुम्हारे थाने आया पुलिस वाला की
0: अरे पुलिस वाला कौन है
1: वो पुलिस वाला कहता है मैं
0: तो तू फिर तू थाने जाना मुझे क्यों ले जा रहा है
1: पुलिस वाला अबे तेरे नाम की रिपोर्ट लिखी है
0: तो कहता है तो फिर इसको पकड़ जिसने रिपोर्ट लिखवाई है मुझे क्यों पकड़े जा रहे हो भाई
2: ये बहुत होता है हमारे यहाँ
0: अच्छा जी खवातीन हजरत हम इस शो को ज्यादा से ज्यादा रंगीन बनाने के चक्कर में बहुत सारे गाने भी गाए नए गाने भी गा रहे हैं क्योंकि हम इंडियन गाने तो गाते नहीं है हम अपने ही गाने गाते हैं तो अब इसलिए ताकि हमारे पे कोई कॉपीराइट का भी चक्कर नहीं हो बस अभी ये नवीद जो इटालियानो साहब हैं तो कुछ बेचैन हो रहे हैं गाने के लिए क्या
2: जोक नहीं
0: हाँ गाना नहीं है कौन सा गाना
2: गाने बताओ
0: अच्छा ठीक है अभी है नवीद इटालियानो जो है ना ये गाना गाएंगे तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो

All right, let's listen to. अली जफर को सुनते हैं। काफी अरसा दिन हो गए, इनका कोई गाना नहीं सुना।

0: your location for maximum music.
1: My dear friends, welcome after the break. After Gane bhi suna chuke, Hindi mein Italian bhi suna chuke, aur Huma bhi suna chuke. Ab Huma jo hai na, koi incident hote na, ghar mein kabhi ladai ho jati hai, kyun hoti hai? Behno se ladai hogi, bhai se ladai hogi. या आर्ट्स काउंसिल में काम करते हुए तो एक शैतान बैठा हुआ है आर्टिस्ट मतलब क्या बोलते हैं यार उसको सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा होता है आर्टिस्ट है ना. हाँ तो कोई ऐसा वाकया याद हो आप उस अपने ऑडियंस सुनना चाहती है गाने तो अपने अच्छे अच्छे गा दिए दोनों. अब इनसे भी पूछूंगा आपसे भी पूछूंगा. हर बात में शिकायत होती है ना, शिकायत दूर करने के लिए पड़ते हैं. हाँ जी बताएं बताएं बताएं.
2: एक दफा मैं जो हूँ स्टेज पे गा रही थी, इशरतुल अबाद का ने आना था.
1: अच्छा
2: तो जो है मैंने स्टार्ट किया नहीं हम सियासत पे नहीं जाते लेकिन ऐसे मतलब म्यूजिकल था.
1: हाँ
2: तो जो है उसने उन्होंने आना था तो जैसे स्टार्ट किया तो एक ही दो लाइन बोली लोग तो बोल रहे थे वाह लेकिन एकदम से नीचे से माइक निकल गया
1: माइक निकल गया क्या बोले
2: मतलब उसकी तार जो है मतलब वायर

0: वो मेरे पास है, मैं आपको आते हुए नहीं दे सका, अब मैं घर जाते हुए जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दूंगा।
1: बेगम को बताएं दही लेता हूँ,
0: या तो मैं ये अपना ये नदीम साहब को दे दूंगा, ये बड़ा शोखा है ये नदीम साहब, इसको दे दूंगा, ये चश्मा आपको दे देंगे, ठीक है।
1: अच्छा, मैं अपनी बेगम को एक मैसेज देना चाहता
0: हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो मैं दही लेता हूँ,
0: दही माल अगर दही लेके नहीं आए तो फिर,
1: और अंडे डबल रोटी भी खाता हूँ,
0: अंडों से मारेंगे।
1: अच्छा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्रोग्राम, कोई भी गलत बात मुंह से निकल गई हो, कोई भी ऐसी बात को बुरी लगी हो, तो प्लीज हमें,
1: हम ऐसे ही हैं,
0: या आप ऐसे, हम ऐसे नहीं हैं,
1: हम नेक्स्ट टाइम भी वही बातें करेंगे।
2: ओके जी, अल्लाह हाफिज़।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको। हुसना दी सरकार कह दिया की कह दिया ये तो अबरारुल हक ही बताएंगे। मैसेजेस कर सकते हैं आपके चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे आप 3636 बैक। सवाल से पहले आपके मैसेजेस की जाने जाएंगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट लिंक में आपसे सवाल कर लेंगे। सबसे पहले फीता किसने काटा है?
1: महरीन ने। महरीन कैसी हो?
0: और महरीन का मैसेज हमने जल्दी पढ़ लिया। मेरा ख्याल है ये हमारे प्यारे से शगी साहब जो है द लिविंग लेजेंड वो शो कर रहे थे तो उसमें उनके गेस्ट भी आए हुए थे, मिस उमा भी थी, बहुत ही सुरीला गा रही थी। शगी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे। क्या बात है भाई क्या बात है, हमने सुना नहीं,
1: ये तो गलत बात है।
0: खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। तो ये उनका मैसेज था। फीदा जो असल में काटा गया है वो यूसुफ भाई ने बापूच से काटा और कहते हैं कि तमाम सुनने वालों को और एफएम 100 की तमाम फैमिली को अस्सलाम वालेकुम।
1: खुसूसी तौर पर हबीबी
0: आंटी को चाची को रुसा को गुलबानों को और तमाम डॉक्टर्स को इमरान भाई खिताब गुल्लाला गफरान भाई एंड मेरे वाले साहब को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? और हमारी शहजादी बहना आ गई है, मेरा ख्याल है प्यारी सी बहना आ गई है रूसा मेमन, कह रही है सलाम आज मेरे भाई की बर्थडे है, अल्लाह पाक मेरे भाई को हर खुशी से नवाजे आमीन सुम आमीन। मैं बहुत लकी हूँ इतना अच्छा भाई मिला है मुझे, ये इरफान मेमन के बारे में कहा जा रहा है, उनकी है बर्थडे मेरा ख्याल है, यानी कि मैं सही समझ रहा हूँ। तो तमाम कजन आई हुई है रूसा मेमन और आपकी तबीयत कैसी है ये भी बताना है आपने मुझे, यानी कि समझ रही है ना आप। चले इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक के जाने आलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो। अल्फाज ट्रैक आपने सुना हमजा मलिक और जैन साहब का, और उम्मीद आजकल बड़ा पॉपुलर है भाई।
1: मैंने सबसे पहले चलाया था अपने शो में।
0: हैं जी, ते हैं जी। चलिए सवाल की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे। सवाल आज का ये है कि बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो हमारे लिए एक रहमत है। हमारे सर पर उनका साया कायम और दायम रहे, जिन जिन के बुजुर्ग हयात हैं, और जो जो बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भरपूर दुआएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, और बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। अब ये जहन में रखिएगा, मैं अक्सर ये बताता भी हूँ कि बुजुर्ग में और बूढ़े इंसान में फर्क होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना। तो हम बुजुर्गों की बात तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े इंसानों की भी बात करेंगे। हमने ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाने वाले या बूढ़े अफराद कौन से मुल्क में हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। ये बताना है आपने 3636 बार, और बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की जानेब। बेबी अच्छा जी, अरुषा मेमन कह रही है बेहतर है भाई, मेडिसिन पर चल रहे हैं, आपने दुआ की, जजाक अल्लाह भाई। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ये बस ऐसे भागेगी क्या नाम है बीमारी, ये आपकी सोच है। हम सब ठुडे मार मार के ये अंदर से निकाल देंगे आपकी बीमारी दुआओं के जोर से। जीती रहो। और आयशा मेमन आ गई हैं, महवेश भी आ गई हैं, फरहान भी आ गई, मानूर भी, मेमन भी आ गई हैं, और दुआ की तरफ से इरफान भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू। और इरफान को हम बर्थडे आप लोगों की जानिब से स्पेशली मतलब विश करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, जिंदगी साथ है। हाय हाय, आज जिंदगी भी आ गए जल्दी जल्दी, यानी कैसे मिजाज है। जबरदस्त सॉन्ग अल्फाज, थैंक्स। वाओ, आपको कैसे पता मैंने आपको डेडिकेट किया, थैंक्स जो गा आपने। हैं जी, ते हैं जी। जी सॉन्ग पसंद आया आपको, बहुत बहुत मेहरबानी। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्यारी सी चाची आ गई हैं। अरे हाय चाची, थोड़ा सा वक्फा तो रखा करें, फौरन जवाब दे देती हैं, और बिल्कुल दुरुस्त जवाब देती हैं, ये भी हैरत है। चाची द ग्रेट, लाऊंगा किसी दिन मुश्किल से सवाल, मैं खुद नहीं लाता ज्यादा मुश्किल सवाल, उसकी वजह है ना, ज्यादा इम्तिहान में क्यों डाले भैया। हमारे अब्बास भाई तारिक रोड वाले भी आ गए हैं, और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब आ गए हैं गुजर खान, तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब, आदाब, आदाब। हबीबी, एक और गाने की जानिब लेके चलते हैं, आपको बड़ा जबरदस्त गाना है, अल्लाह बड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको मेरा दिल पीतल सा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको आया होगा पसंद। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब। अनम मेमन भी आ गई हैं। अरे भाई आज तो सब जमा हुए हैं। इरफान मेमन ने मुझे कल बता दिया था और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप। मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड की तरफ से इरफान भाई को हैप्पी बर्थडे। हंसते मुस्कुराते रहे आमीन जुमा आमीन। इरफान मेमन बर्थडे बॉय भी आ गया है कह रहे स्वीट सोने को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल। ऑल कजन्स और सिस्टर्स को थैंक्स कह दिया है उन्होंने। हाय अल्लाह जी जिंदगी कहती है कि आज तो प्लेलिस्ट बहुत जबरदस्त है अच्छा लग रहा है दिल छू लिया है। हाय अल्लाह जी थैंक यू थैंक्स दिल से बनाई है प्लेलिस्ट। आपको बड़ी हैरत अंगेज बात बताता हूँ। आज आए हुए थे गेस्ट ग्रेट सिंगर हुमा आई हुई थी शकी साहब के शो में। यकीन माने बिल्कुल वक्त नहीं मिला बस जो जो समझ में आ रहा चलाया जा रहा हूँ यानी कि समझ रही है ना बस दिल से शुरू किया है काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आ रहा है यानी कि समझ रही है ना जिंदगी इसी बात पर इसी तारीफ पर हम आपको ट्रैक डेडिकेट करेंगे बहुत अच्छा से। ओहो भाई क्या बात है थम्स अप। हमारी प्यारी सी बहना नसरीन पटेल कैसी हैं आप जीती रहे मुस्कुराती रहे आपका थम्स अप ही बहुत है। और कोसाए भाई ये मेरा डेवलपर अकाउंट है बड़ी अच्छी बात है भाई जबरदस्त आप डेवलपमेंट अपनी जारी रखें। और जना चाची को सलाम कहा है और तमाम सुनने वालों को भी सलाम कहा है अब्बास भाई ने गाने इनको बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इरफान मेमन भाई को कहा है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर इरफान भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा ख्याल है कि अब इरफान मेमन को बर्थडे विश कर देनी चाहिए और इरफान मेमन ना आपको जो गाना सुनाया जाएगा वो भी बर्थडे गाना है और आपके पसंदीदा सिंगर की आवाज में। लेकिन सबसे पहले तमाम मेमन सिस्टर्स की जानिब से एफएम 100 के तमाम लिसनर्स की जानिब से

भाई हैप्पी बर्थडे इरफान मेमन साहब आपको। और अभी हम एक बहुत जबरदस्त ट्रैक की जाने जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है ये सजाद अली की आवाज में है और बर्थडे ट्रैक है। तो इरफान मेमन आपके लिए स्पेशली तमाम मेमन सिस्टर्स की जानिब से, FM 100 के तमाम लिसनर्स की जानिब से एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे, गाते रहे गुनगुनाते रहे रहे। हमारे आगे हैं गुफरान भाई, खुश

ब्यूटीफुल ट्रैक और काफी दिनों के बाद आपने सुना होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और 3 बजे तक ये अल्लाह बुला जारी हो सारी है। सवाल मैंने आपसे ये फ्लोट किया है कि बताना है आपने कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर बूढ़े अफराद जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग होते हैं, कौन सा मुल्क है वो, ये बताना है आपने। और माशाल्लाह से सब लोग अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, दुरुस्त दुरुस्त जवाब दे रहे हैं, हाजिर जवाब है काफी। सलीम मेमन आ गए हैं और कहते हैं सलाम सुने और सबसे पहले अरूसा मेमन के लिए ढेरों दुआएं और एक सॉन्ग सजाद अली साहब का जन्नत होगी जाना होगी, जन्नत होगी जाना होगी है कि समझ नहीं आया कौन सा गाना है सजाद अली, ये कौन सा गाना है भाई सजाद अली का मुझे नहीं पता भाई। और खैर वो कह रहे हैं कि संजीदा जी और तमाम मेमन ब्रदरी को डेडिकेट कर दीजिएगा सलाम मेमन, कर देंगे जनाब। अरुषा मेमन कह रही है कि दिसंबर के एंड में है एंगेजमेंट, अरे क्या बात है, और 2 मंथ के बाद शादी यानी कि जनवरी फरवरी, फरवरी में शादी हो रही है ना गल। अरुषा मेमन मेरी प्यारी सी बहन है, इतनी जबरदस्त खबर दे दी आपने, बस इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। आयशा कह रही है, आयशा मेमन आपने विश किया इरफान भाई को, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा आप फैमिली मेंबर हैं। हाय अल्लाह जी, मैं तो समझता था, आप नहीं समझती थी इससे पहले, आपका समझाना नाइस। कल इरफान भाई के घर पार्टी है, कल तो पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई। इरफान भाई तो कह रहे थे पार्टी शाटी, बस तुम लोगों ने पार्टी में आना है तो जरूर, लेकिन कल के शो के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, कल बड़ा डिफरेंट शो होगा, तो अच्छा है आज ही मैं विश कर दूं ज्यादा से ज्यादा। और कल हमारे शो में एक गेस्ट आएंगे और मैं फेसबुक पर पोस्ट लगाऊंगा, आज बड़ा जबरदस्त किस्म का शो होगा कल जुमेरात वाला, यानी कि समझ रहे ना। हाँ, और आयशा के इस मैसेज के बाद और आगे बढ़ते हैं। सलीम मेमन आपका चुटकुला भी नहीं पढ़ेंगे, पहले मैसेज हो जाए यार सारे, उसी में टाइम गुजर जाता है। कतर एयरवेज से पहली बार दुबई जा रहा था, एयर होस्टेस ट्रे में व्हाइट से लड्डू जैसे कोई चीज लेकर आई, मैंने भी एक लड्डू ले लिया, मुझे समझ नहीं आया ये है क्या। आसपास लोगों ने लड्डू को खोला तो वो सैनिटाइजर टिश्यू पेपर निकला मुंह साफ करने के लिए, शायद ज्यादा साफ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और फरीन शहजादी हमारी बहन आ गई हैं, करी हबीबी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सुनने हो, तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम अस्सलाम वालेकुम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। मौश्क भी आ गई हैं, करी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, शुरू से सुन रही हूँ। कल का शो बेस्ट था, बहुत रश था, आज तो आपका मूड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, खुश मिजाज है नजर ना लगे, एंड तक रहूंगी साथ, सारे सॉन्ग सुपर, थैंक यू, बस साथ रहना और अपने साथ का एहसास दिलाती रहना इक्का दुक्का मैसेजेस के थ्रू, हैं जी ते हैं जी। अरे भाई जान कहां गया मैसेज भाई वो, हाँ नौरीन तौसी बहन आ गए हैं, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुनियो के कैसे मिजाज शरीफ है, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समाधों के लिए भी। अच्छा भाई बड़ी तफसील के साथ इन्होंने बताया भाई, और आपका जवाब जो है वो हमेशा की तरह दुरुस्त है, लेकिन बताएंगे नहीं हम, ये गुप्त रखा हुआ है हमने। इरफान मेमन कहते हैं सुनियो बर्थडे में मुफ्ता तो शादी में क्या होगा मेरा, अरे ये मोहब्बत है प्यार है शहजादे, आने वाली का अल्लाह ही हाफिज है, 6 कजन्स और वो अकेली। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये अभी से तुम्हें इसीलिए लूट रही हूं,
क्योंकि फिर एक ही लूटने वाली होगी, वो छह के बराबर होगी। अच्छा भाई एक जवाब आया, वो जवाब कहाँ गया? मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। हैं जी तो हैं जी, वो जवाब मुझे मिल नहीं रहा भाई, ये क्या बात हुई? हाँ भाई, हमारी नसरीन पटेल बहना आ गई हैं और सलाम के बाद उन्होंने सवाल का दुरुस्त जवाब भी दे दिया है। यार आज इतने दिनों के बाद हमारी बहन सुन रही है तो हम इनको गाना क्यों ना डेडिकेट करें। तो भाई एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक मेरा पसंदीदा है बहन, अगर पसंद ना आए तो बहुत माजरत चाहूंगा, नसीन पटेल को कह रहा हूँ। लॉयनर रिची का गाना है और ये मेरी बहन इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, और अरूसा मेरी शहजादी बहना वो भी सुनती थी, तो ये मैं अरूसा को भी डेडिकेट करूंगा और नसीन पटेल हमारी मिसेस फारूक को भी डेडिकेट करूंगा। ब्यूटीफुल ट्रैक है, मेरा मूड और अच्छा हो जाएगा ये सुनने के बाद।

आई होप ये ट्रैक आप सबको भी पसंद आया होगा. लॉनी रिची टुनाइट विल बी योर राइट ब्यूटीफुल ट्रैक. हाय अल्लाह जी, पता नहीं क्यों मुझे ये गाना बहुत पसंद है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया हो. बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब और देखते हैं कि क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं. सलाम, कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम. कहा है नाम नहीं लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर का मैसेज है, यानी कि समझ आया ना आप. अच्छा भाई, साहिबजादा साहब ने एक और बात लिख दी है और कह रहे हैं कि बाबा फरीद गंज शक्कर एक गरीब आदमी को चार कोयले थैली में डालकर इस पर तीन बार अलहम्द पढ़कर दे देते हैं. वो अपनी बीवी को बताता है बाबा ने चार कोयले दिए हैं. बीवी ही थैली खोलती है, उसमें तो चार हीरे हैं. वो आदमी पूरी बोरी कोयलों की ले आता है. रात भर दोनों मियां बीवी अलहम्द पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता. वो बाबा के को आके पूरी बात बताता है. बाबा फरमाते हैं नादान फरीद की जुबान खाने से लगा. हाँ, फरीद की जुबान कहाँ से लाए. हाय हाय, हमारे बहुत ही ये हमारे जितने भी हमारे खुशकिस्मती है कि बुजुर्गाने दीन जो है हमारे, उनके जो कारनामे हैं, कारनामों से मुराद तो कारनामे तो नहीं कहा जाएगा, बस उनकी जो अल्लाह से जो लॉ थी, तो अल्लाह भी उनकी कोई बात रद्द नहीं फरमाता था. बाबा फरीद गंज शकर, वाह वाह, अच्छी अच्छी बातें लिख देते हो भाई. लाइट नहीं है, दिमाग खराब, कहाँ जाऊं. हमारी जरीन नूर बहन आ गई, मेरा ख्याल उन्हीं का था. हाय, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शाम में. और जनाब अलीमुद्दीन साहब क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं जनाब, और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है. और इरफान मेमन भाई को उनके जन्मदिन पर दिल से दुआ दी है. भाई एक और हमारी बहुत ही प्यारी से लिसनर हैं अख्तर अली सोमरो साहब.

बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं अख्तर अली सोमरो साहब, उनकी बेटी सोरो की भी बर्थडे है, उसको भी हमने विश करना है, अभी करेंगे कुछ ही देर में करेंगे, तो वो ये ना समझे कि हम विश नहीं कर रहे हैं। इरफान मेमन हंस रहे है, ओ सही बात बता रहा हूँ ऐसे में। कुछ ही कुछ ही तंग करती रहूंगी, शो कलरफुल, सारे कलर दिल को भा रहे हैं। हाय अल्लाह जी हबीबी। अच्छा जनाब, आप लोगों को एक विशिंग की जानिब लेकर चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। और गाना असल में एक सिंधी सॉन्ग है, बड़ा जबरदस्त था, बहुत से लोगों ने गाया है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया है मैंने वही सिलेक्ट किया है। सोरो की बर्थडे है भाई, तो सोरो आपको सबसे पहले

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। ब्यूटीफुल ट्रैक है ना, होप के हमारी प्यारी सी सोरू को पसंद आया होएगा। अख्तर भाई आप भी बताइए जरा आपको कैसा लगा गाना भाई। और जनाब आयशा मेमन कह रही है आने वाली बहुत अच्छी है, कल पार्टी अच्छी देना, केक से काम नहीं चलेगा, कंजूस इरफान वरना एहतजाज होगा। भाई मेरे ख्याल में तो सिर्फ केक वेक नहीं होगा, केक होगा साथ में थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट होगी, चाय होगी और उसके बाद कुछ देर हल्ला गुल्ला और फिर रात को डिनर। डिनर में मेन्यू आप लोग बता सकती हैं सब कजन्स इरफान को, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाय जरी नूर कह रही है मैं पुकार पुकार कर थक गई हूँ, अब तो आ जाओ संजो। ये मेरी प्यारी सी बहन का मैसेज दिल से है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई इससे पहले कि जिंदगी भाग जाए तो जिंदगी को क्यों ना एक गाना डेडिकेट कर दिया जाए। हमारी बेसुरी आवाज में सुनना चाह रही थी, तो गाना देख रहे हैं हम कौन सा चलाएं। चलें एक बड़ा मेलो सा ट्रैक है, पहली दफा गाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको शायद पसंद आ जाए, और अगर आए तो बताइएगा, जरा बेजुरी सी आवाज सुन लीजिए आप।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सब को
1: कैसा लगा भाई
0: जरूर बताइएगा 3636 पर। और हमारी प्यारी सी बहन जरीनू ने बता दिया है नाइस सॉन्ग बहुत अच्छा सुनाया भाई बहुत बहुत शुक्रिया और जिंदगी साथ है और करी वाओ दिल छोटी दिलकश आवाज जब तक जिंदगी है नहीं भूलेंगे और बहुत तारीफें लिखी हुई हैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाह रहे हम थैंक यू वेरी मच जिंदगी। और नवीद भाई आ गए हैं कह रहे मैं सुन रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है एक ट्रैक की उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर यानी कि समझ रहे हैं ना आप मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वाज वाज जबरदस्त सुपर डुपर नाइस सॉन्ग ऑफ नदीम भाई लव यू लाला जी फैंटास्टिक मास्टर मतलब तारीफें फुल टाइम होना शुरू हो गई अच्छा भाई आयशा कह रही हैं कि भाई केक और टी और पराठा का बोल रहे हैं केक और टी सही है भाई और पराठा सिर्फ पराठा ना ना ना ना ये तो गलत बात है आयशा मतलब चाय पराठा और केक ये क्या बात हुई भाई इतने सस्ते में छोड़ रही हूँ जब भाभी आ जाएगी ना तो फिर ये मुफ्ते मुफ्ते नहीं होंगे इस दिन में रखना अभी बस वक्त है तो यानी कि समझ रही है ना आप हाँ। और इरफान मेमन का भी दिल बहुत बड़ा है मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छी तरह यानी कि समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छा भाई जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको भी बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने हो स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ और आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए के चाय लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल जो मैंने फ्लोट किया है वो ये है कि आपने ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग ज्यादा उम्र वाले लोग किस मुल्क में पाए जाते हैं हमारी प्यारी सी चाची ने नौरीन बहना ने और भी बेतहाशा हमारे प्यारे से लिसनर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सवाल में तकरीबन दुरुस्त जवाब आ रहा है माशाल्लाह से भाई बड़े तेज हो गए हैं आप लोग यार बहुत तेज हो गए हैं। और ताहिरा मसूद कह रही है अस्सलाम वालेकुम ताहिरा कैसी हैं आप उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। नौरीन बहना कह रही है बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाया आपने माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया गाना अच्छा है ना मैं बस ऐसे दिमाग में आ रहा था तो मैंने बोला कि चलो यार और हमारे अब्बास भाई तारिक रोड वाले कह रहे हैं बहुत जबरदस्त गाया आपने शुक्रिया भैया बहुत बहुत शुक्रिया भाई तारीफों पर तारीफें हो जा रही है समझ नहीं आ रहा बहुत सारे लोग गैर हाजिर हैं हमारे अयूब आफरीदी लाला हैं संजू हैं एस गुल हैं एच गुल हैं क्या बात है क्या बात है गुफरान भाई आपकी मसरूफ हैं आप कुछ आज मसरूफ हैं आप थोड़े से इन्होंने जो थोड़े से का इशारा किया ना बहुत खूब किया क्या बात है। अच्छा जनाब अभी जो है हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं सज्जाद अली की आवाज को हम शामिल कर रहे हैं और ये ट्रैक जो है हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से आप सबको डेडिकेट करेंगे और इरफान मेमन मैं अपनी जानिब से आपको करूंगा एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो है मलंगदा हासा दुनिया खेड तमाशा ब्यूटीफुल एंड आई होप कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा. मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर. और आशा कहती है कराची में है एक ही इस वक्त बुजुर्ग इरफान. और सॉन्ग प्ले करने का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है. एंड साहिबजादा साहब का भी मैसेज आया, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अरे वाह भाई, जरीन नूर ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है. वकार हरिपुर से आए हैं भाई. वकार साहब आपको खुश आमदेद कहेंगे, फर्स्ट टाइम लगता है हरिपुर से कोई आया है. और हो सके हो कैसा है, अच्छा भाई लिखना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं भाई. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से. गुलाम अली का आवाज में कोई भी सॉन्ग अगर हो जाए तो क्या बात है. वकार भाई, गुलाम अली की आवाज में अगर आपने सॉन्ग सुनना है तो आप कल का शो सुनिएगा, कल के शो में आपका नाम लेकर चला देंगे. ये खास तौर पर अयूब लाला के लिए है. एक खान साहब से उसके वाइफ ने कहा कि आप कभी भी हमको घुमाने नहीं लेकर गए. खान साहब ने बोला तैयार हो जाओ, आज हम तुमको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा तुम भी क्या याद करोगी. खान साहब जो है अपने वाइफ को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए. वाइफ ने बोला ये तुम मुझे कहां ले आए. खान साहब बोले अरे वो पागल, इधर आने के लिए तो लोग मरते हैं. वाह वाह वाह. और जनाब मिस्टर बीन को तो आप जानते ही हैं, वो असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और क्वालिफाइड पायलट हैं. वो अपनी फैमिली को भीमास आइसलैंड की सैर कराने लेकर गए. बड़ा प्लेन वेस्ट इंडीज लैंड करता है, वहां से छोटे प्लेन पर चार या छह सीटर हायर किया जाता है. मिस्टर बीन ने भी हायर किया, रास्ते में पायलट को हार्ट अटैक हो जाता है. मिस्टर बीन प्लेन का कंट्रोल संभाल लेते हैं, सेफली लैंड कर जाते हैं. होए होए होए, साहिबजादा साहब बता रहे हैं क्या बात है भाई. मिस्टर बीन की इस हवाले से थोड़ी सी चर्चा बाद में सुने हो. लगता है आपको बादाम खाने पड़ेंगे. सजाद अली का ये सॉन्ग मैंने बोला था डेडिकेट करने के लिए सलीम मेमन भाई की जानिब से. भाई सलीम मेमन की जानिब से भी ये डेडिकेट किया जाता है. ठीक है भैया, तो बादाम लाकर दीजिए ना सलीम मेमन भाई. किलो दो किलो नहीं लाकर दीजिए, आप अगर आधा किलो भी ला देंगे तो एक एक पाव मैं और गुफरान भाई बांट लेंगे और बादाम खाएंगे. वो भी तो गाने ढूंढते हैं ना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप. अच्छा जी, गुलाम वकार गुलाम अली सॉन्ग बाद बेदर्द ढोला. फिलहाल बेदर्दी जो है हम कहीं और दिखाते हैं. हमारे प्यारे से मिर्जा शुजा साहब जो है वो सुन रहे हैं गुज्जर खान से, तो उनको मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूं आज अपनी जानिब से. एलो फड़ो.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो गल सुन दिलबर जानी सबात बतीन का ये ट्रैक था और काफी पॉपुलर ट्रैक था और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा मिस्टर बीन के हवाले से साहिबजादा साहब ने एक उनका वाकया जो है वो कोड किया और देखें अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तो मिस्टर बीन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और उसके साथ साथ वो जहाज को उड़ाना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं। तो ये वाकया उन्होंने बताया था कि जब वो उस आइलैंड पे गए तो पायलट को जो है हार्ट अटैक हो गया। क्या बात है यार, किस्मत अच्छी थी, जबरदस्त वाकया था। और जनाब FM 100 आई लव यू भाई जान आपको, गुमनाम लिसनर नजीर अहमद के खुदा पाक हम सबको प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। नजीर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज किया आपने, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और एस गुल आखिरकार आ गई हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अयूब लाला संजीदा आप ही मुश्क चाहत और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। और कहती है नदीम भैयो अयूब लाला के लिए ये इतना अजीब सा लतीफा किसने कहा? ये सलीम मेमन साहब हैं, ये सलीम मेमन साहब और अयूब लाला, ये आप अयूब लाला को बता दीजिएगा कि ये लतीफा भेजा था। अच्छा भाई चाची कहती हैं कि नदीम FM पर सिर्फ दो बुजुर्ग हैं, एक कीन दूसरा अयाज, मीन और अयाज, एक मीन और अयाज। मीन कौन है? अयाज का तो समझ आ गई, एक मी। अच्छा एक आप और एक अयाज, आप दोनों बुजुर्ग हैं। अयाज कहां से बुजुर्ग हो गया, तो लड़का है, यंग बॉय है। और आप भी बुजुर्ग कहां हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी परी चाची, ओके ठीक, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, हमारी जानिब से आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। भाई गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब्बास भाई को, अब्बास भाई ये मूंगफली के दाने का समझ में नहीं आया। झूठी रानी दिल को खुश कर देता तुसी नदीम लाला। अच्छा पसंद आया मेरे भाई को है, इसका मतलब है सुनना है। मैं सोच रहा था कि शायद इन्होंने नहीं सुना। इरफान मेमन कह रहे हैं कि सोनो FM की फैमिली भूल गई है, सलीमुद्दीन और सलीम मेमन ने विश किया मासूम गरीब से बच्चे को। भाई हमने इमरान साहब के मैसेजेस सारे पढ़े और सलीम मेमन का मैसेज, विश वाला मैसेज भी मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा, मैसेज तकरीबन सारे मैंने पढ़े जो मुझ तक पहुंचे हैं ना, वो सारे मैंने पढ़े हैं। तो लिहाजा जो नहीं पहुंचे तो उसका भाई मेरी तरफ से आई एम बुजुर्ग, आई एम दादी एंड नानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको पड़ नानी पड़ दादी और उससे भी आगे जो होता है वो भी बनाए, हमारी दुआ है चाची, ढेरों दुआएं आपके लिए इस हवाले से। और जनाब कहां गया मैसेज, नवीद भाई कह रहे हैं आपका छोटा भाई, और शकील साहब भी सुन रहे हैं भाई। अच्छा चीफ साहब तो नहीं चलाएंगे हम भाई, आतिफ असलम का आपने गाना गाया था उसकी आवाज हम आपको जरूर सुनाएंगे। बादाम कौन सा वाला खाएंगे आप, अमेरिकन या ईरानी? वफरान भाई से भी पूछ लें, सलीम अमन पूछ रहे हैं भाई। हाँ भाई गुफरान भाई, सलीम मेमन साहब कह रहे थे कि नदीम भाई आप बादाम खाया करें, आप भूल जाते हैं। मैंने भी विश किया था, मैंने बोला यार तुम बादाम ला के दोगे तो खाएंगे ना, मैंने ये नहीं कहा कि दो तीन किलो लेकर आओ, मैंने कहा यार आधा किलो ले आओ, एक एक पाव हम बादाम खा लेंगे मैं और गुफरान भाई। तो वो पूछ रहे हैं कि ईरानी बादाम या अमेरिकन, वो कह रहे हैं कि बादाम कड़वा नहीं होना चाहिए, बेहतरीन बादाम होना चाहिए, कागजी हो तो ज्यादा अच्छा है। पाओ पाओ के दो लाइएगा पैकेट, गुफरान भाई कह रहे हैं, ताकि क्योंकि मैंने कहा भाई कि मैं तो चलो यहां पर मैसेजेस पढ़ रहा हूं गाने चला रहा हूं, गुफरान भाई भी दिमाग लड़ाते हैं गाने ढूंढते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन साहिबजादा. वी आर फ्लाइंग 33,000 फीट ओवर अटलांटिक. वी रीच न्यूयॉर्क एट 4 आवर्स. थैंक्स. ये कौन सा जहाज चला रहे हो भाई जो 4 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं यहाँ से? अटलांटिक ओशन से जा रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन जेंटर. कैप्टन साहब, कैप्टन साहबजादा साहब, जरा ये बताइए कौन सा आप जहाज पर लेकर जा रहे हैं, लेडीज को भी और जेंटलमैन को भी, जो 4 घंटे, 16 घंटे की फ्लाइट है न्यूयॉर्क की, ठीक है ना? और उसमें डायरेक्ट फ्लाइट की बात कर रहा हूं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि तकरीबन 1 घंटे का स्टे है. अगर आप जिस भी एयरलाइन, जिस मुल्क की एयरलाइन से भी जाते हैं अमेरिका, तो वो अपने मुल्क के में रुकती है और वहां से फिर आगे अमेरिका के लिए फ्लाई कर जाते हैं. तो ये तकरीबन डायरेक्ट फ्लाइट 16 घंटे की है, और जहाज तकरीबन अमेरिका की फ्लाइट के लिए जो प्रवास करता है और अटलांटिक ओशन जब क्रॉस करता है तो अप्रोक्सीमेटली 800 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहा होता है जहाज. 800, मतलब वैसे तो ये 600, 700, मतलब ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? 700 to 800 के दरमियान में ही होता है. और 16 घंटे में आप वो स्टे भी निकाल दें, 15 घंटे लगा लें, चले आप वो भी निकाल दें 14 आवर्स लगा लें, तो आप 4 घंटे में न्यूयॉर्क कैसे पहुंचा रहे भाई? ये कौन सा जहाज है जरा मेरे को बताओ. सुपरसोनिक हो तो वो अलग बात है भाई, सुपरसोनिक के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुपरसोनिक भी 4 घंटे में नहीं पहुंचेगा.
1: बात ये कि सुपरसोनिक एयरप्लेन नहीं है ना.
0: नहीं नहीं,
1: जेट है
0: ना, वही तो
1: वो तो जेट है ना
0: वो जेट. नहीं नहीं, एक मैं आपको बताऊं, एक सुपरसोनिक जो पैसेंजर भी था, पता है आपको?
1: वो वाला सुपरसोनिक नहीं होगा ना.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, सुपरसोनिक की बात बता रहा हूँ. सुपरसोनिक फ्रांस का था, उस जहाज का नाम था कॉन्कॉर्ड, और वो सुपरसोनिक पैसेंजर जहाज था. ये मैं सही कह रहा हूँ ना, ये हमारे कैप्टन साहब साहिबजादा बताएंगे. अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता सकता हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग जो है ना चलने की बात है, क्योंकि बहुत पहले मैंने इस हवाले से पढ़ा था.
1: जी, मैं ये बोलने के लिए आया हूँ कि पाव पाव दोनों भिजवा दें.
0: पाव पाव दोनों भिजवा दें क्या?
1: अमेरिकन और
0: इंडियन. अरे हाँ, ये बात भी आपका अच्छा मशवरा है. कह रहे हैं वो पाव पाव अमेरिकन और पाव पाव जो है आप ईरानी भेज दें. हम दोनों में से जो भी बेहतर होगा हम खाते रहेंगे, जो बेहतर नहीं होगा बाद में खा लेंगे. तो सलीम मेमन साहब, इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप. अच्छा भाई, मेरा ख्याल है कि अब गाने की जाने भी जाना चाहिए. हाँ, समरीन बलोच भी सुन रही है जनाब, उनका भी मैसेज पहले पढ़ लूं, काफी देर से नहीं पढ़ा था. समरीन बलोच कह रही हैं कि तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, और शो उनको बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. नीली आंखों वाली. तो जनाब, अब आपको लेके जाना है एक ट्रैक की जाने. तो गुफरान भाई, आप बताइए, थोड़ा सा तेज गाना चलाएं, थोड़ा सा मेलो सा ट्रैक चलाएं या स्लो चलाएं? बताएं बताएं. मेलो चलाऊं? ये भी यार देख लो यार, तेज चलाने के मूड में था, उसने कह दिया तो मेलो ही चलाना पड़ेगा. अब ढूंढ रहा हूं मेलो कौन सा है. हाँ, अच्छा, ये बहुत ज्यादा मेलो है, लेकिन मैं चला देता हूं आपके कहने पर. गुफरान भाई की जानिब से आप सबके लिए.

वेलकम बैक जनाब। और अब आपकी फरमाइशें ही चलेंगी जो जो कि आपने फरमाइशें की हुई हैं। अब्बास भाई क्या कह रहे हैं, ढेर सारी दुआएं दी हैं उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। चाची कह रहे हैं करीम डीबीएक्स से 16 hours 30 minutes और वहां मिनिमम 9 है पाकिस्तान से। अच्छा भाई, चाची ये बता रही हैं कि दुबई से जो है अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क की फ्लाइट जो है वो तकरीबन 16 hours की है, 16.5 hours की, तो वही 18 hours लगा लीजिए चाची, लेकिन फिर भी 4 hours कैप्टन साहब आपने बताया नहीं साहब ज्यादा। और अफगानिस्तान से स्पेन की, स्पेन के बादाम अच्छे हैं, अफगानिस्तान और स्पेन के बादाम अच्छे हैं, अमेरिकन कड़वे नहीं होते ना स्पेन के। बस सही है भाई सलीम मेमन भाई, आज तो बादाम बादाम ही चल रहा है भाई हर तरफ। इरफान मेमन क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे भाई, वो कुछ लिखा था उन्होंने और उसके बाद यानी कि समझ रहे ना।

अच्छा जनाब, कह रहे हैं हमारा सॉन्ग कहाँ है, ये हमारे प्यारे से अब्बास भाई कह रहे हैं। अब्बास भाई जरा इशारे दुरुस्त दीजिए, समझ में नहीं आया, वरना हम चला चुके होते कब का, आपका सॉन्ग चला चुके होते, आपके इशारे नहीं समझे हम, अपने इशारे दुरुस्त कीजिए, बेहतर कीजिए। तो वक्त बड़ा महदूद सा है और आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी है, तो हमारे प्यारे से नजीर अहमद साहब ने जेजे की रिक्वेस्ट की थी, वाइटल साइन जुनैद जमशेद की, तो उनका एक बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक नजीर अहमद साहब के लिए।

नजर से जब तुम नजर मिले, और उम्मीद करता हूं कि ट्रैक पसंद आया होगा। और जनाब हमारे नवीद भाई और उनके साथ शकील साहब, उन्होंने आतिफ असलम की फरमाइश की थी।

ब्यूटीफुल ट्रैक जनाब आतिफ असलम की आवाज सुनाई आपको, और अब हम सुना रहे हैं जनाब एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक है मैडम का, मलका तरन्नम नूरजहां का, लेकिन उसको रिमिक्स किया गया है और हमारे अब्बास भाई तारिक रोड वाले उनको डेडिकेट करेंगे।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। एक तेरा प्यार मैंने मिलिया, मैं दुनिया से होर की लेना, और सवाल मैंने जो किया उसका जवाब भी दे दें आपसे। लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ का एक मैसेज आया हुआ है। कहती है, तेरे प्यार का क्या हिसाब दूं, तेरी मोहब्बत को क्या खिताब दूं, कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें जरूर पेश करते, जो खुद ही गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूं। क्या बात है जनाब। और ये आशार जो है ये उनकी रूह जां के लिए कता है। और दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में होती है। इरफान मेमन और फैमिली को मेमन फैमिली को बेशुमार दुआएं और बर्थडे की मुबारकबाद। हमेशा शादो आबाद रहें। नौरीन महना, आपका मैसेज थोड़ा लेट पड़ा, माजरत चाहूंगा। अब्बास साहब ने थैंक यू कह दिया है। और अब जनाब सवाल के जवाब की जाने बातें हैं। सवाल जो मैंने किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जो है वो कहां पाए जाते हैं, इसका जवाब माशाल्लाह से आप सबने तकरीबन दुरुस्त दिया है, तकरीबन सबने। इसका जवाब है जनाब जापान। लंबी उम्र के हवाले से जहां बड़ी तादाद में लोग तकरीबन 80 और 90 साल से ज्यादा की उम्र पाते हैं, और उसकी वजह बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन सहूलत, सुकून, ये है जनाब इसका जवाब। और सभी ने दुरुस्त जवाब दिया इसका। और अब आप लोगों से जो है वो इजाजत चाहनी है, क्योंकि वक्त फुर्र करके उड़ गया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही चला गया है। और जो लास्ट ट्रैक है वो हम नौरीन तौसीफ की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं।

जनाब उनकी रूह जान यानी कि संजू को, और उसके साथ साथ संजू को ये ट्रैक बहुत से लोगों ने डेडिकेशन के लिए कहा था तो मैं भूला नहीं हूं। तो आप सब की जानिब से संजू के लिए बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.